0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

वेल, किसी ने कहा है कि व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन मुझे लगता है नाम बहुत ही ज्यादा अहम है. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और एक बात बताइए मुझे, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बस एक बार मिले हो और फिर कुछ दिन या कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद उनसे दोबारा सामना हो और उन्होंने आपको आपके नाम से बुलाया और आपका पहला रिएक्शन ऐसा होता ना, अरे आपको मेरा नाम याद है, आप पता नहीं क्यों, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना. वैसे सोचो तो नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ लेटर्स है, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब कोई हमें नाम से याद रखता है ना तो एक अजीब सी खुशी होती है. शायद इसलिए क्योंकि उस एक छोटी सी बात में हमें यह एहसास होता है कि हम उनसे सिर्फ मिले नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके यादों में एक छोटी सी जगह बना ली थी और एक अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा था. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कभी कभी किसी को लाइक स्पेशल फील करवाने के लिए कोई बड़ा जेस्चर नहीं चाहिए होता है, बस उनका नाम याद रहना ही काफी रहता है. वैसे ऐसा हुआ है आपके साथ कभी, किसी ने अचानक से किसी बहुत स्ट्रेंजर, किसी के साथ आप बहुत अरसों बाद मिल रहे हैं, जस्ट एन एक्वेंटेंस, लेकिन आपका नाम याद रखकर आपको बुलाया हो और आपकी कोई एक बात याद रखी हो. माइक से दिल तक आफरीन है. आप भी अगली बार ऐसे करने की ना जरूर कोशिश करिएगा, लोगों को अच्छा लगता है. फिलहाल आपको अच्छा लगवाने के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने बजाने वाली हूँ मैं ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Escabana,
1: Puscabana, Sacabana. Rambala. Burga, Burga. La Virtua, la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे हैं
3: राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर

0: ये है चेहरा तो,
1: मैगजीन है।
0: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है।
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास तो?
0: नहीं नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: कॉपी मुझे भी भेजना
0: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
0: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
0: वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को। नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा, मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हाय दिस इज अनुराधा पौडवाल।
4: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
5: दिस इज विनोद राठौड़ एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार।
4: भूल से पर्दा कीजिए।
6: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
8: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
9: Yes.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
10: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
11: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
2: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
13: 89.6
2: Mirchi.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: भले ही अरे मन की आवाज में ये 90s नॉस्टैल्जिक गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपने सुना और मैं हूँ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन है आपके साथ और हर दिन के साथ ना उम्मीद जो रहती है हमारी जिंदगी में हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई रहती है और वो कभी ना हम छोड़ते नहीं है भले चाहे जितना भी आपको मन ना हो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट
1: और ऐसी कुछ उम्मीद मिली भी ना इस मौसम के साथ है। कतर का मौसम हर रोज हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा लेकिन होगा ये हम जानते हैं कहीं ना कहीं और वो कोई ऐसा एक दिन आएगा जहां पर सडनली आपको बहुत अच्छा और बहुत ही प्लेजेंट महसूस होने लगेगा। लेकिन आज का दिन वही कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम टेम्परेचर। ऑल इन ऑल शायद कल के जैसे ही कुछ वेदर आज नजर आ रहा है। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत ही जबरदस्त गुजरे मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची इट्स

0: वेल माय फ्रेंड्स, अगर कतर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोच रहे हो ना, तो ये न्यूज डेफिनेटली आपके लिए है। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, दैट क्लासेस कब से शुरू होंगी, और कई बार फीस पे करने के बाद भी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होने का वेट करना पड़ता है। तो बता दो, कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ नया खबर लेके आई है आपके लिए।
1: क्या खबर कतर?
0: वेल, अब कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ड्राइविंग स्कूल्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहली बात तो, ड्राइविंग स्कूल्स बिना क्लियर रिटन कॉन्ट्रैक्ट के कस्टमर्स से फीस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके? दूसरी, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट डेट क्लियरली मेंशन रहनी चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कस्टमर्स को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक से इश्यूड परमिट नंबर ऑब्टेन करने की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अब ड्राइविंग स्कूल्स को कंप्लायंस के लिए 1 month ग्रेस पीरियड दिया गया है, जो उन्हें ऑफिशियली नोटिफाई किए जाने के दिन से काउंट होगा, और उसके बाद मिनिस्ट्री इंस्पेक्शंस भी करेगी ताकि चेक किया जा सके कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये तो हमारी कतर की खूबसूरत बात है ही, राइट? जहां प्रॉपर इंस्पेक्शंस होती है। अब आपके लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ड्राइविंग स्कूल के साथ इन रिक्वायरमेंट्स को लेकर कोई कंप्लेन है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेल्पलाइन 16001 पर आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, 16001। तो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर का एडमिशन करवा रहे हैं तो 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, दैट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्म ट्रेनिंग स्टार्ट डेट एंड परमिट नंबर। क्योंकि ड्राइविंग सीखने में पेशेंस तो चाहिए, लेकिन क्लासेस कब शुरू होंगी इसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता है ना? माइक से दिल तक हाँ फ्री है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स.
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज. द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स. ऑर्डर नाउ.
1: Powered by iPay Wallet.
0: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
1: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
0: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
4: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
5: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
6: Baladna.
5: Taste that Qatar loves.
1: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
7: How's the Josh?
8: Hi, sir!
7: How's the Josh?
8: Hi, sir!
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोल डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, कहते हैं ना, किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और हम देसीज के यहाँ पर जैसे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले सवाल तो यही होता है ना कि चाय लोगे या कुछ ठंडा, और जवाब भी चाहे जो भी हो, किचन में कुछ ना कुछ बनाना ना शुरू हो ही जाता है। दैट्स आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति है ना। और याद है बचपन में जब घर पर मेहमान आते थे तो मम्मी कैसे सबसे अच्छे वाले कप प्लेट्स निकालती थी, और वो स्पेशल डिनर सेट जो सिर्फ मेहमानों के लिए रखा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, इट्स अ वे ऑफ शोइंग लव एंड वॉर्म्थ, और यही तो है हमारी मेहमान नवाजी। वेल, स्पीकिंग ऑफ फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, कतर में भी कुछ कम नहीं है। एक बार कतर तो बढ़ चढ़ के अपने विजिटर्स, अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, एंड दैट्स व्हाट कतर इज ऑल सेट टू ब्रिंग दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर विद फूड कतर एंड हॉस्पिटैलिटी कतर 2026। और इसी के बारे में जानने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी मिस एली सार, रिलेशनशिप मैनेजर एट IFP कतर, जो हमें बताएंगी कि इस साल के एग्जीबिशन के बारे में व्हाट्स न्यू, व्हाट्स एक्साइटिंग, what visitors can look forward to. So you got to stay tuned with me, that is simply Afreen, mic se dil tak pahunchti hui on Mirchi It's Hot.

0: is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार।

0: Well, हमारे देसीज में तो मेहमान नवाजी की कितनी ज्यादा अहमियत है हम जानते ही है, लेकिन इसे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से देखें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टॉकिंग अबाउट मेहमान नवाजी। लेकिन थोड़े से कतर के एंगल से और प्रोस्पेक्टिव से देखें तो फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली इन कतर, फ्रॉम न्यू रेस्टोरेंट्स एंड इंटरनेशनल क्विजींस टू वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, वी हैव सीन क्वाइट अ ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स। एंड स्पीकिंग ऑफ ग्रोथ, हॉस्पिटैलिटी कतर इज नाउ इन इट्स 11th एडिशन एंड दैट्स क्वाइट अ जर्नी। सो वेल, मेरे साथ में है एलिसा जो है IFP की रिलेशनशिप मैनेजर, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग दैट लुकिंग बैक ऑल दीज इयर्स, हाउ हैव यू सीन हॉस्पिटैलिटी कतर इवॉल्व एंड हाउ हैज कतर्स फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चेंज्ड अलोंग द वे?
1: Okay, I think we've seen a lot of positive development in Qatar's food and hospitality industries over the year. So Qatar continues to attract international companies and also they want to expand in the Qatari market. So at the same time, the expectation of the exhibitors have changed. Companies are no longer looking for visibility. They also want to meet like qualified buyers, find distributors, explore partnership, and generate real business opportunity. So that's why networking and B2B matchmaking have become so important. So at IFP Qatar, we focus on creating an environment where business can connect with the right people. Also, the visitor can expect a combination of business opportunities, culinary experience, networking, and also recognition of the people who contribute to the growth of Qatar's hospitality Qatar sector.
0: Lovely. Lovely. Rightly said that it is a joint effort by everyone here. Jo Qatar mein hospitality industry se hai, jo food industry se hai, this exhibition is the right place for you, which is going to start today. And where is this happening? This is happening at DECC.
1: Yes, at DECC every day for the 3 days, 12, 13, 14 October from 12 to 9 p.m. Hall 5.
0: ओके, सो यहाँ एलिसा ने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, लेकिन इस एग्जीबिशन में इस साल क्या खास होने वाला है, व्हाट आर द हाइलाइट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM।

0: साच भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में ये गाना फ्रॉम आवारा पन टू एंड हमारा रिश्ता जो इमरान हाशमी के साथ है, डेफिनेटली इट्स अ पुराना रिश्ता. देर हैज ऑलवेज बीन टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक वो है जो खुल्लम खुल्ला इमरान हाशमी को पसंद करते हैं, कहते हैं यार अपन तो इमरान हाशमी फैन है, और एक है जो साइलेंटली कहीं ना कहीं बताते नहीं है लेकिन दिल में जरूर इमरान हाशमी को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, क्योंकि यार इमरान हाशमी की एक्टिंग की स्किल्स देखा जाए इट इज गुड ऑनेस्टली. विद दिस चलिए हो चला है कि गोल्ड के अब अपडेट्स बताऊं मैं आपको. एंड वेल विद दिस माय फ्रेंड्स टाइम हो चला है कि आपको मैं गोल्ड की अपडेट्स बता दूं.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल आज के गोल्ड के अपडेट्स ये कहते हैं दैट 1 ग्राम पैम बार इज फॉर 569 कचुरियाल, वेर एज 5 ग्राम पैम बार इज फॉर 2664 कचुरियाल, 10 ग्राम बार इज फॉर 5258 कचुरियाल, 1 ounce बार इज फॉर 16252 कचुरियाल, एंड 10 तोला बार इज फॉर 60332 कचुरियाल. ये थे आज के गोल्ड के रेट. अब गोल्ड लेना हो या ना लेना हो, लेकिन जब भी भाव पर नजर रहती है ना तो फिर सही वक्त पर सही डिसीजन ले पाते हो आप. मीनवाइल दिस इज आफरीन विद यू राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार. बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे.
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द

0: Milci.
1: Iskabana, poskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर.
2: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे बजाऊंगा.
3: आप मुझे क्या बताए, आप बदतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दी आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
3: GWM के निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस.

Well, अब आपको दोस्त ढूंढने की क्या जरूरत है, यहाँ पर हर रोज मुलाकात होती है। सुबह 6 से लेकर 10 के बीच में आपकी ये दोस्त आफरीन हाजिर हो जाती है। Well, उदित नारायण की आवाज में ये जो गाना हमने सुना है यार, साथ में सुनीता राव भी थी वैसे, गुप्त मूवी का ये गाना, एंड दिस सॉन्ग हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वैग एंड वाइब। हम वो बॉबी देओल का जो लुक था, वो चश्मे और वो घुंघरीले बाल गुप्त का, एंड इसमें का जो डांस था पर्टिकुलरली, भले ही थोड़ा सा इधर उधर था लेकिन आइकॉनिक जरूर था, याद है? चलिए वक्त हो चला है कि आपके फायदे की बात करें। अब हाँ जी, आज के एक्सचेंज रेट जो है वो ये कहते हैं कि एक कतरे रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.49, वही जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट एक कतरे रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 76.15, वही बांग्लादेशी टाका जो है आपको मिल रहे हैं 33.77, और एक कतरे रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.80, और नेपाली रुपीज इज एट 42.29। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 पर शिवान, इट्स हॉट। दिस इज द फ्यूचर मैन।

0: नुसरत साहब की आवाज में गाने आई थिंक सो जनरेशन से जनरेशन ना वो जब भी सुनाई देंगे वो हमेशा रेलिवेंट लगेंगे, वो हमेशा खूबसूरत लगेंगे. वो कहते हैं इट्स एवरग्रीन ट्रैक्स, दैट्स हाउ नुसरत साहब का एक जादू था. वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: वेल वेल वेल हाँ जी, और वक्त हो चला है कि आपके साथ में कुछ गेम शेम खेला जाए. लेकिन आज का जो गेम है थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आप ये गाना सुन लीजिए पहले, उसके बाद में ये गेम के बारे में ना मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करवा के इसे वापस लेकर आती हूँ. पापोन और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गाना जब आप सुनोगे ना यू गोना एंजॉय इट सो मच. एंड बर्फी मूवी का ये गाना है. कुछ ही देर में मैं आती हूँ और आज का जो गेम का एक हिंट ये भी दे रही हूँ मैं कि ये हमारे 90s 2000 से नहीं, हाँ 90s 2000 से भी जुड़ा हुआ है लेकिन इट गोज बैक टू 80s एज वेल. थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट देते हुए मैं अगला गाना सुनाती हूँ और इस गाने के उस पार मिलती हूँ. राइट, यू ऑन माय चीट्स हॉट.

0: Wow, what a cute gana right here on Mirchi. And it's time ki main mera pitara kholu. Mirchi Mystery Box. All right, आज ना ये पिटारे में मैं चार गाने आपको सुना रही हूँ, ठीक है? और जैसे मैंने कहा कि 80s से जुड़े हुए गाने हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है जो हम बहुत अच्छे से इन्हें जानते हैं. हम 90s 2000 वी नोन हिम ऑल द वाइल. सो इन सब गानों में कुछ एक चीज़ कॉमन है, कोई एक इंसान कॉमन है. वो कौन है आपने ये गेस करना है, ठीक है? पहला गाना तो उनका सुना रही हूँ जिनका बर्थडे कल था, यानी बिग बी का बर्थडे था और वही गाना है. एंड देन और फिर तीसरा गाना है क्या है कॉमन इस गाने में. अगर नहीं समझ आया तो शायद ये अगला गाना जो है उससे आप समझ जाओगे कि इन चार गानों में कुछ एक चीज को एक इंसान कॉमन है और वो क्या है. वेल, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? इंतहा हो गई अब ये गाना हो या आई एम अ डिस्को डांसर या तमा तमा लोगे. तो बताइए कौन सा है इस चारों गानों में, कौन है जो कॉमन है. 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. यू हैव टू कम हियर एंड टेल मी फटाफट से. बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं. बड़ा मजा आ रहा है ये देखते हुए कि आंसर्स जो है actually right आ रहे हैं. So waiting for your answers. 5000 1896. तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. लेकिन उससे पहले जरा ये भूमि पेडनेकर क्या कहना चाहती है this इस जो क्या कहते हैं भूमि पेडनेकर नहीं बॉलीवुड भोल दाल हम सुनेंगे यहाँ पर. लेकिन इस ब्रेक के उस पार मैं आपको मिलूंगी राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
1: बॉलीवुड भोल दाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड भोल दाल. Only on Mirchi. It's hot.
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood Bollywood Bollywood Bol Dal. Only on Mirchi. It's hot.
4: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं. यू गाइस एंजॉयड इट.
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
10: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपके साथ जुड़ गई है। और आज तो मैं इतना अलग सा गेम लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं जनरली आपको 90s के एरा में ले जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और पीछे लेकर गई, यानी 80s के एरा में। और मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आज का सवाल क्या था? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, मेरे पिटारे में से आज चार गाने निकले हैं, और गाने जो मैंने बताए थे आपको थोड़े से पुराने यानी 80s के जनरेशन के हैं। एंड यू हैड टू गेस दैट व्हाट इज दिस वन कॉमन थिंग बिटवीन ऑल दीज सॉन्ग्स। सो हियर इट गोज। पहले पहले वाला गाना सुनते हैं।
1: इंतहा हो गई इंतजार की।
0: एंड देन

और फिर मैंने हिंट तो दे ही दिया हमेशा की तरह कि लास्ट गाना सुनो, इससे तो जरूर समझ जाओगे, है ना? आया ना, यही सुन के आपको याद आया है, आई एम सो श्योर. वेल, इन सभी के बीच में एक चीज कॉमन थी और वो सबके आंसर बिल्कुल राइट है, बट फॉर सम रीजन ना आज मैं किसी का भी वॉइस मैसेज प्ले नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन नाम जरूर ले लूंगी. राज का मैसेज आया था, देन आई हैव योर, इनका नाम क्या है, कम, अच्छा इनका नाम कम है, अहमद मोहम्मद है, देन आई हैव बालकृष्णन, देन आई हैव रियाज, ताहिर, उपेंद्र शर्मा, देन आई हैव योर, इनका नाम क्या है, विवेक का मैसेज आया है, शाहिद अंसारी का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है. एवरीवन इज राइट टुडे, यू नो, क्योंकि सबने कहा है कि भाई इन सभी में बप्पी दा, हमारे गोल्ड वाले म्यूजिक कंपोजर, गोल्डन आवाज के साथ में, दैट्स द थिंग कि ये सारे गाने इन्होंने कंपोज किए थे. बप्पी दा ने भले ही ये गाने गाए ना हो, लेकिन कंपोज जरूर किए थे, एंड आई जस्ट लव बप्पी दा का साउंड ट्रैक. तो बस अगला गाना जो है सोचा चलिए एक मजेदार गाना हो जाए बप्पी लहरी की आवाज में. Enjoy this track right here on Mitchie Gets Hot.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Laya I pay best bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
2: वेल एक्सचेंज रेट पर नजर डालते हुए आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.49, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज जो है वो आज है 76.15 पर, बांग्लादेशी टाका जो है इट इज एट 33.77, वेर एज श्रीलंकन रुपीज एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं एग्जैक्टली एट 90.80 और नेपाली रुपीज इज एट 41.99. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. अगला गाना कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज़ में on Mirchi It's Hot.

0: दोबारा सारी चीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्च जुड़ गई है आपके साथ। देखिए अगर आजकल के बच्चों को पूछा जाए ना कि करियर ऑप्शंस क्या है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो, तो मेरे अपनी तरह नहीं है वो कि डॉक्टर इंजीनियर और पायलट का आंसर देते हैं। आपके बच्चे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है हायर एजुकेशन से लेकर।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है कि कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर ने दो नए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मीडिया। दोनों प्रोग्राम्स जो है जैन 2027 से शुरू होंगे। AI प्रोग्राम में मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस और कंप्यूटर विजन जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, और डिजिटल मीडिया में डिजिटल राइटिंग, पॉडकास्ट प्रोडक्शन, वेब डॉक्यूमेंट्रीज और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन कवर किया जाएगा। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि एग्जिस्टिंग CCQ स्टूडेंट्स के ट्रांसफर्स 18 अक्टूबर से ओपन होने वाले हैं, और न्यू एप्लीकेंट्स जो है वो नवंबर 1 से अपनी एप्लीकेशंस जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो बस दोनों प्रोग्राम्स जो है ये 2 साल के कोर्सेज है और एडमिशन कॉलेज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई स्टूडेंट है टेक्नोलॉजी या मीडिया में करियर को एक्सप्लोर करना चाहता है, देन कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर की एडमिशन डिटेल्स को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। वेल, मैं हूं आफरीन आपके साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए अरिजीत सिंह की आवाज में। अगला गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है इस नंबर से, गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
8: Yes.
7: कैच क्या है?
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
7: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
8: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
9: इट्स बैक एलजी एंड जंबो की मेगा प्रमोशन। एलजी अप्लायंसेस, एसीज, गेमिंग मॉनिटर्स, टीवीज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर अशोर्ड गिफ्ट वाउचर्स, प्लस अप टू 3 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी, मुकाफा पॉइंट्स, नजूम एयर माइल्स और एवियोस। विजिट एलजी ब्रांड शॉप्स, जंबो स्टोर्स या js.qa। हरी, ऑफर वैलिड टिल 19th October।
10: खटखट,
11: हू देयर?
10: बनता
11: बनता हूँ।
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
11: खटखट, हू देयर?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

फहीम अब्दुल्ला की आवाज में सैयारा का टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची। और बताइए मुझे एक बात, आप कि कभी आपको हॉस्पिटल में इंजेक्शन या आईवी ड्रिप लगी है? अगर हाँ लगी है तो आपको पता होगा कि कभी कभी नर्स को सूटेबल वेन ढूंढने में कितना वक्त लग जाता है ना कभी कभी। और अगर बार बार इंजेक्शन या ड्रिप की जरूरत पड़ती है तो पेशेंट्स के लिए ये एक्सपीरियंस काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब इमेजिन करिए उन पेशेंट्स को जिनको कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान रिपीटेडली आईवी मेडिसिन लेनी पड़ती है। वेल, इसी प्रोसेस को अब आसान और सेफर बनाने के लिए HMC ने हमर जनरल हॉस्पिटल में एक न्यू स्पेशलाइज क्लिनिक लॉन्च की है। इस क्लिनिक में ऑन्कोलॉजी और वैस्कुलर सर्जरी स्पेशलिस्ट मिलकर पेशेंट्स को असेस करेंगे ताकि उनके ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल इंट्रावेनस एक्सेस प्लान किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, एम ये है कि मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देने का प्रोसेस पेशेंट्स के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और रिलायबल हो और अवॉइडेबल ट्रीटमेंट डिलेज को रिड्यूस किया जा सके। और मुझे लगता है हेल्थ केयर में ऐसे डेवलपमेंट्स भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ इफेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट के लिए उसका सफर जितना हो सके कम्फर्टेबल बनाना ये भी बहुत जरूरी है, राइट? माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। अगला गाना सुनो निगम और महालक्ष्मी की आवाज में ऑन मिर्ची के साथ।

0: देखे ये ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती और बड़ी कीमती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मैं बात कर रही हूँ ट्रस्ट की। और ऐसा कई बार हुआ है ना कि आपने किसी इंसान पे ट्रस्ट करके अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया, उनके सामने आपकी पूरी जिंदगी की किताब खोल दी, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो बस इसी आज के इमोशंस पर आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि जहन में जहर भरकर लफ्ज मीठे इस्तेमाल करते हैं, जहन में जहर भरकर लफ्ज मीठे इस्तेमाल करते हैं, राजदार बनकर यहाँ कुछ लोग जज्बातों का कारोबार करते हैं।
2: मुस्कानें झूठी हैं,
0: जज्बातों का कारोबार। और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता और हर कड़वी बात कहने वाला पराया नहीं होता। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। उन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: आई डोंट हैव टू माउथ दोज
4: लाइंस. सॉरी ब्रो, सॉरी.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल के किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Bank Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Bank Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
8: Cut, cut!
9: Who there?
8: Whom are you?
9: Whom are you who?
8: Aray, whom are you looking for, madam?
9: Cut, cut! Who there?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

Well, अरिजीत सिंह की आवाज में एनिमल मूवी का ये गाना जितना ज्यादा मुझे पसंद है, उतनी ही ज्यादा ना पसंद मुझे ये मूवी एनिमल लगी थी। Very good morning and welcome back. Simply Afreen है आपके साथ right here on Mirchi Mornings and हम पूरी मिर्ची टीम, अब मेरा तो यहाँ से टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन पूरी मिर्ची टीम जो है किसी को हेलो हाय कहने का वक्त आ गया है, यानी ऑल द किडोज आउट देयर ऑफ लोयला इंटरनेशनल स्कूल। सो लोयला स्कूल में हम जाने वाले हैं अभी मिर्ची टीम GWM के साथ में, यानी हवल सीरीज की जबरदस्त गाड़ियों में बैठ कर कंफर्टेबली, और बस बच्चों के साथ में खूब मस्ती धमाल होने वाली है। सो यू गॉट स्टे ट्यून विद अस, यानी मिर्ची वन कतर पे जाइए, फॉलो कीजिए, स्टोरीज में सारा जलवा दिखेगा। और अभी रिसेंटली जस्ट नाउ मैंने वो वाला वीडियो भी डाल दिया है, यानी जहां हम गए थे आइडल इंडियन स्कूल, वहां बच्चों के साथ क्या मस्ती की है वो भी आप देख सकते हो ऑन मिर्ची वन कतर इंस्टाग्राम पेज। तब तक के लिए आफरीन लेती है अलविदा, मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो, अपना ख्याल रखिएगा और इजाजत है। चलिए खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1,
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं विद तुमियो बंदू 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1। दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।
2: नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माय गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि audience को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये perception किसके लिए create कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में, मैं आपको बोलूँ नहीं आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीस थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: चल, इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17. Do it.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6
1: राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए किस लिए, कहाँ पे लगाना
1: नहीं
2: है?
1: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
1: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
1: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: कॉपी मुझे भी भेजना
1: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
1: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
10: नंबर 16।

ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में, नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सच नहीं जमाना लगे धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब यह आवारापन जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज।

0: है।
1: इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की आवाज के रूप में सुना है, लेकिन अब वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था, फिर ले आया दिल। प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे, अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं, आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है, 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खटखट, अकबर।
2: अकबर हु?
1: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
2: खटखट, हु दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे, और यही प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं हैराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स आप बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

0: नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1 नंबर 11 पर इसे समझो ना।
1: नंबर 11।
2: वैसे तो जमाने भर की

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई वैसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो।
0: भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस।

0: ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो, बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि इररिलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप, मैं इतना इररिलेवेंट हूं कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माय शॉर्ट ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स और माय फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट इन दैट।
1: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 9।
2: नंबर 9।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: 잖아. 애쓰나요 대걸처럼.
1: 수리인께서 Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार ये मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
3: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डर। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: कौन है?
5: ईशांत।
6: ईशांत कौन?
5: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
6: खट खट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैं अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी। एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है, और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी।
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया, उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया, उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं, अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया, एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉक 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: फ्री।
1: चलिए वक्त हो चला है कि आपके फायदे की बात करें अब। हाँ जी, आज के एक्सचेंज रेट जो है वो ये कहते हैं कि एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.49। वही जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 76.15। वही बांग्लादेशी टाका जो है आपको मिल रहे हैं 33.77। और एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.80। और नेपाली रुपीज इज एट 42.29। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां।

0: 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: दिवाली के बाद से लेकर न्यू ईयर्स तक अब सिर्फ हॉलिडे मोड ऑन रहेगा। ऑन दिस शो हर हफ्ते टॉप 10 गाने। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द मिर्ची इंडी पॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां पर हम पूरे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट इंडिपेंडेंट पॉप गाने आपके लिए पेश करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 गानों के साथ साथ यहाँ पर हम बहुत सारे आर्टिस्ट से बात करेंगे, कुछ अकूस्टिक वर्जन सुनेंगे, 90s के इंडी पॉप की तरफ जाएंगे। इस हफ्ते 3 नई एंट्रीज हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस, तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन से। पहला गाना यानी कि गाना नंबर 10 पर ही इस हफ्ते एक नई एंट्री है। बहुत टाइम बाद सुप्रा ने एंट्री मारी है, दैट इज सुकृति प्रकरण प्रकृति कक्कड़। उनका गाना दोबारा इज ऑन गाना नंबर 10 एंड देन उसके बाद श्रुति रानी की आवाज में हाय हाय ये मजबूरी ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10

0: Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Nafir bala burga. Mirchi burga.
3: Hello.
4: Bhai sahab, Srinivas Puri Thane se bol raha hu. Mobile kahan se mila aapko? ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
7: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
8: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
9: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback.
10: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
8: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
11: GWM ke Mirchi Recharge mein Ideal Indian School ke bachcho ne ki dher sari masti and fun. Let's hear it from them.
12: 9.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
13: इट वाज ग्रेट फन। थैंक यू मिर्ची, थैंक यू जीडब्ल्यू।
14: थैंक यू मिर्ची फॉर द जीडब्ल्यूएम रिचार्ज, इट वाज रियली फन, स्पेशली द मैजिक शो
15: एंड शो गौरव अफिन, थैंक यू वेरी मच।
16: खट खट।
17: कौन है?
16: अज्जू।
17: अज्जू कौन?
16: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
17: खट खट, हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में द सॉन्ग वॉज कॉल्ड मीठी मीठी. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके द सॉन्ग वॉज ऑन गाना नंबर 7. काउंटडाउन पर गाना नंबर 8 पर ममता शर्मा समीर खान की आवाज में था तुझे देखे मेरी आंखें, विच वॉज अ न्यू एंट्री ऑन नंबर 8.
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन द शो कॉल मिर्ची इंडी पॉप 10. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कनिका. एट आरजे कनिका मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सो आके कनेक्ट करो, बिंदास फॉलो कीजिए. आई होप यू एंड योर फैमिली हैड अ ग्रेट दिवाली. दिवाली हमारे यहाँ एक दिन या दो दिन का फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ वीक लॉन्ग अफेयर. पूरे हफ्ते जोरदार सेलिब्रेशन चली, बहुत सारी दिवाली पार्टीज हुई, सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद एथनिक पिक्चर्स, दिवाली सेल्फीज, दिवाली प्लेलिस्ट. एक ऐसी आवाज जो हिंदुस्तान में आज जो भी प्लेलिस्ट बने उसमें जरूर शामिल होती है, वो है जुबिन नौटियाल की. पिछले साल का सबसे स्ट्रीम गाना जुबिन की आवाज में था. मिर्ची इंडी पॉप के जरिए भी बहुत सारे लोग उन्हें चाहते हैं, तो यहाँ पर आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, एन अनहर्ड अनप्लग्ड मिर्ची वर्जन ऑफ फ्यू सॉन्ग्स ओनली इन जुबिन नौटियाल की आवाज. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड एंजॉय.
2: गुलाब

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: एंड वेल विद दिस माई फ्रेंड्स, टाइम हो चला है कि आपको मैं गोल्ड की अपडेट्स बता दूं।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, आज के गोल्ड के अपडेट्स ये कहते हैं दैट 1 ग्राम पैम बार इज फॉर 569 कचरियाल, वेर एज 5 ग्राम पैम बार इज फॉर 2664 कचरियाल, 10 ग्राम बार इज फॉर 5258 कचरियाल, 1 ounce बार इज फॉर 16252 कचरियाल, एंड 10 तोला बार इज फॉर 60332 कचरियाल। ये थे आज के गोल्ड के रेट। अब गोल्ड लेना हो या ना लेना हो, लेकिन जब भी भाव पर नजर रहती है ना, तो फिर सही वक्त पर सही डिसीजन ले पाते हो आप। मीनवाइल, दिस इज आफ्रीन विद यू राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे।
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा। फूड कतर 2026, कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में, गाने का नाम है ओ साजना, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: इंडी पॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: नेहा कक्कड़ म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेते ही ना लोगों के ओपिनियंस डिवाइड हो जाते हैं। We're going to talk about it, but usse pehle, hello and welcome. This is the Mirchi Indie Pop 10, the only show on Mirchi, jahan par pure hafte ke top 10 hottest independent pop gaane aapko sunne ko milte hain. Main hoon aapki host RJ Kanika. At RJ Kanika is mere Instagram ka handle. So do connect with me. Koi gaana recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Neha Kakkad ke fans khud ko Nehearts bulate hain. Hashtag Nehearts. Aur internet par aapko har teesra insaat ek Nehu Heartian milega. Is kadr ki mohabbat karte hain log Neha Kakkad se. And dusri ek side aisi hai jo Neha Kakkad ko khul ke troll karti hai internet pe. These party tracks, recreations, in sab ke beech mein hum kahin na kahin bhool jate hain that Neha Kakkad ek aisi awaaz hai jinhone hame kuch बहुत सॉफ्ट एंड मेलो गाने भी दे रखे हैं। आई नो ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, बट नेहा कक्कड़ वॉज द वॉइस बिहाइंड

दिस सॉन्ग वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेहा कक्कड़. 6 साल पहले नेहा कक्कड़ ने ये रिप्राइज वर्जन अपलोड किया था एंड इट हैज क्रॉस मोर देन 1.2 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. मिर्ची इंडी पॉप 10 के खजाने से आज बहुत सरप्राइजेस निकल रहे हैं एंड ऐसा ही एक सरप्राइज नेहा कक्कड़ की आवाज में एक सॉफ्ट रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए गाया था इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू.

बंदी का अंदाज नेहा कक्कड़ वाला ही है. किसी भी गाने को नेहा का गाना कैसे बनाना है, दैट्स व्हाट शी डज बेस्ट. हार्डी संधू का गाना सोच का रेंडिशन बाय नेहा कक्कड़ ओनली ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10 एट आरजे कनिका पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी. एक क्विक इंडी पॉप क्विज दे रही हूँ आपको. नेहा कक्कड़ का पहला बॉलीवुड गाना जो था उसमें दीपिका पादुकोण थी फॉर अ मूवी जिसमें सैफ अली खान भी थे. कौन सा था वो गाना, एट आरजे कनिका पर आके जल्दी जल्दी बताओ. नाउ मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन. अगले वाला गाना सिद्धार्थ कश्यप मोहम्मद इरफान की आवाज में दिल आवारा पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर ऑन गाना नंबर 4. एंड प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू इज हिमेश रेशमिया का गाना. गाने का नाम है दिल डिस्को करे. इट्स अ न्यू एंट्री ऑन गाना नंबर 3. यू लिसनिंग टू मिर्ची इंडी पॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. इंडी पॉप 10 नंबर 3.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's hot.
4: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खट खट हू दैट।
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: मिलिंद गाबा एंड योयो हनी सिंह की आवाज में पेरिस का ट्रिप आपके घरों तक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: इंडी पॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू मिर्ची इंडी पॉप 10। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, फॉलो मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। एकदम फ्री है यहाँ पर इस शो पर। हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट इंडिपेंडेंट पॉप गानों की गिनती करते हैं। 9 गाने हो चुके हैं, द किंग ऑफ द काउंटडाउन बाकी है। बट उससे पहले इट्स टाइम फॉर अस टू गो बैक टू आवर क्लासिक्स। And the song we feature this week is
2: Channa Bekhariya Jaade Bola Bekhariya Jaade।
0: कुणाल गांजेवाला की आवाज में चन्ना वे घर आ जावे, एन एवरग्रीन सॉन्ग। गाने दो टाइप के होते हैं, पहले जिसमें म्यूजिक लिरिक्स के साथ, दूसरे जिसमें म्यूजिक सिर्फ वाइब के लिए। एंड देन देयर आर क्लासिक्स व्हिच आर एक्चुअली अ मिक्स ऑफ बोथ। दिस ट्रैक बाय कुणाल गांजेवाला इज एवरीथिंग इंडी एवरीथिंग पॉप। सो अपनी रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ऑन माय कैसेट क्लासिक दिस वीक दिस इज चन्ना वे प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कुणाल गांजेवाला की आवाज में. दिस वॉज चन्ना वे ऑन माई कैसेट क्लासिक दिस वीक. अपने सजेशंस भेजते रहिए, अपने रिकमेंडेशंस भेजते रहिए कि यार वो वाला गाना भी तो था. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम इज वेयर यू विल फाइंड मी. एंड नाउ जब पूरा माहौल बन चुका है, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरू उनो सॉन्ग ऑफ दिस काउंटडाउन. नेहा कक्कड़ एंड रोहन प्रीत की आवाज में, गाने का नाम है बारिश में तुम. एक बार फिर से एक पोजीशन ऊपर उठ के ये गाना बन चुका है गाना नंबर वन. एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. इंडी पॉप 10 नंबर वन.

0: बॉलीवुड और नवरात्रि का कनेक्शन सिर्फ डांस और म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। याद है हम दिल दे चुके सनम का वो मैजिकल गुजरात, जहां गरबा सिर्फ एक डांस नहीं प्यार के पनपने का जरिया भी था। संजय लीला भंसाली ने उस फेस्टिवल को इतने ग्रैंड स्केल पर दिखाया कि स्क्रीन पर रंग, रोशनी और इमोशन सब एक साथ जिंदा हो गए। और शायद यही तो बॉलीवुड का मैजिक है, वो हमारे फेस्टिवल्स को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करता, उनके साथ जुड़ी फीलिंग्स को भी यादगार बना देता है। वो फैमिली के साथ टीवी पर गाने देखना, डांडिया नाइट्स के लिए तैयार होना और हर साल किसी न किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर अपने गरबा मूव्स परफेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि नवरात्रि में डिवोशन माँ दुर्गा के लिए होता है, सेलिब्रेशन अपनों के साथ और बैकग्राउंड स्कोर वो तो बॉलीवुड का ही होना चाहिए। तो इस नवरात्रि अपनी प्लेलिस्ट में वो गाने जरूर ऐड करिएगा जो आपको गरबा के साथ साथ कुछ खूबसूरत यादें भी दे जाए। इसीलिए आज के शो पे कुछ स्पेशल होने वाला है, एंड टू कैच ऑल ऑफ दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।
1: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: कभी सोचा है बॉलीवुड ने नवरात्रि को कितना खूबसूरत बना दिया है?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब नवरात्रि आ चुके हैं तो ये डिस्कशन तो बनती है ना यार, जहाँ एक तरफ चौगाड़ा पर थिरकते कलरफुल गरबा स्टेप्स तो दूसरी तरफ ढोली तारो ढोल बाजे का वो ग्रैंड सेलिब्रेशन। और जब नगाड़े संग ढोल बजता है तो ऑनेस्टली दिल करता है बस लहंगा उठाओ और डांस फ्लोर पर उतर जाओ। लेकिन

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं.
3: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: खट खट.
6: Who that?
5: जाहिर.
6: जाहिर. जाहिर हूँ.
5: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
6: खट खट. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नॉडी नॉडी नॉडी माइंड, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ, फिल्मी वाला। आप कहाँ जा रहे हो? चलिए वापस आ जाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश कर सकूं। तो आज इस कोशिश की शुरुआत की गई है विद निखिल। हाउ आर यू?
3: मैं बढ़िया हूँ, मेरे को जल्दी से फिल्म की खेलना है।
0: इंतजार नहीं हो पा रहा है, तो लीजिए फिर पहला सवाल है। आलू ले लो।
3: वेलकम।
0: हाँ, वेलकम में घुंघरू सेठ कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल किस फिल्म में बोलते हैं पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अब किडनी में भी हो रहा है?
3: अब मैं श्योर नहीं हूँ। फिर हेरा फेरी।
0: यस यू आर राइट। फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम कौन लेके आता है?
3: बिपाशा बासु।
0: वेरी गुड। बिपाशा बासु की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग का मामला है?
3: ओ, वो वाला हामी में जो अजनबी।
0: हाँ, अजनबी में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: यार दूसरे हीरो।
0: वाह, क्या जवाब है। दूसरे हीरो, पहले हीरो कौन थे?
3: पहले तो वो हैं अक्षय भाई अपने।
0: हाँ, तो दूसरे कौन है?
3: सनी देओल।
0: नहीं नहीं है तो
3: बॉबी देओल के भाई। अरे
0: बॉबी देओल का किस फिल्म में उनका कैरेक्टर म्यूट है?
3: एनिमल।
0: एनिमल में पापा पगलू कौन है?
3: रणबीर।
0: रणबीर कपूर पॉलिटिशियन किस फिल्म में बने हैं?
3: राजनीति।
0: बहुत बढ़िया। राजनीति में भीगी सी भागी सी बाजुओं में कौन समाती है?
3: कैटरीना कैफ।
0: बहुत जोर से देखा है लगता है।
3: फेवरेट।
0: कैटरीना कैफ किस फिल्म में कमली होती है?
3: कमली। धूम थ्री।
0: धूम थ्री में किसका डबल रोल है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान साइंटिस्ट किस फिल्म में बने हैं?
3: थ्री इडियट्स।
0: थ्री इडियट्स में रैंचो को किससे प्यार होता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर आत्मा किस फिल्म में बनती हैं?
3: तलाश।
0: कहीं तो रुक जा भाई। तलाश में इंस्पेक्टर शेखावत की वाइफ कौन है?
3: विद्या बालन।
0: नहीं, अब मैं इसके आगे गेम खेलूंगी नहीं, बट गेम को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई इस गेम को सुन के अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी ऐसे कुलबुला रहा है तो यू नो द ड्रिल। बाकी तो मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नाड़ी नाड़ी नाड़ी माइंड, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ, फिल्मी वाला। आप कहाँ जा रहे हो? चलिए वापस आ जाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश कर सकूँ। तो आज इस कोशिश की शुरुआत की गई है विद निखिल। हाउ आर यू?
3: मैं बढ़िया हूँ, मेरे को जल्दी से फिल्म की खेलना है।
0: इंतजार नहीं हो पा रहा है तो लीजिए फिर पहला सवाल है। आलू ले लो।
3: अरे वो वेलकम।
0: हाँ, वेलकम में घुंघरू सेठ कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल किस फिल्म में बोलते हैं पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अब किडनी में भी हो रहा है?
3: अब मैं श्योर नहीं हूँ। फिर हेरा फेरी।
0: यस यू आर राइट। फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम कौन लेके आता है?
3: बिपाशा बासु।
0: वेरी गुड। बिपाशा बासु की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग का मामला है?
3: ओ, वो वाला हामी में जो अजनबी।
0: हाँ, अजनबी में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: यार दूसरे हीरो।
0: वाह क्या जवाब है, दूसरे हीरो। पहले हीरो कौन थे?
3: पहले तो वो हैं अक्षय भाई अपने।
0: हाँ, तो दूसरे कौन है?
3: सनी देओल।
0: नहीं नहीं है तो
3: देओल। बॉबी देओल के भाई। अरे बॉबी देओल।
0: बॉबी देओल का किस फिल्म में उनका कैरेक्टर म्यूट है?
3: एनिमल।
0: एनिमल में पापा पगलू कौन है?
3: रणबीर।
0: रणबीर कपूर पॉलिटिशियन किस फिल्म में बने हैं?
3: राजनीति।
0: बहुत बढ़िया। राजनीति में भीगी सी भागी सी बाजुओं में कौन समाती है?
3: कटरीना कैफ।
0: बहुत जोर से देखा है लगता है।
3: फेवरेट।
0: कटरीना कैफ किस फिल्म में कमली होती है?
3: कमली। धूम 3।
0: धूम 3 में किसका डबल रोल है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान साइंटिस्ट किस फिल्म में बने हैं?
3: थ्री इडियट्स
0: में रैंचो को किससे प्यार होता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर आत्मा किस फिल्म में बनती है?
3: तलाश।
0: कहीं तो रुक जा भाई। तलाश में इंस्पेक्टर शेखावत की वाइफ कौन है?
3: विद्या बालन।
0: नहीं, अब मैं इसके आगे गेम खेलूंगी नहीं, बट गेम को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई इस गेम को सुन के अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी ऐसे कुलबुला रहा है तो यू नो द ड्रिल। बाकी तो मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: I don't have to mouth those
4: lines. Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
6: तो सिर्फ छोरे करें.
7: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और नवरात्रि का कनेक्शन ही कुछ और है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और कनेक्शंस की बात की है तो शुरुआत करते हैं। कहीं जाइंट डांडिया स्टिक्स होते हैं, डिजाइनर चनिया चोलीज, इलैबोरेट सेट्स और हंड्रेड्स ऑफ डांसर्स के साथ लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेशन, तो कुछ फिल्मों में छोटे शहरों की गलियों में बजता लाउड स्पीकर, सोसाइटी का गरबा, माँ के हाथ से सिले घाघरे और पहली बार किसी को देख कर दिल का धड़कना। बॉलीवुड ने नवरात्रि को सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह नहीं बल्कि रोमांस, कल्चर, कम्युनिटी, म्यूजिक और आइडेंटिटी के सेलिब्रेशन की तरह दिखाया है। और सबसे खूबसूरत बात, हर जनरेशन के पास अपना एक गरबा एंथम है। और आज अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही मेरे पांच फेवरेट एंथम्स लेकर आई हूँ। जिस लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट द सॉन्ग ओ शेरों वाली, सुहाग फिल्म का ये गाना। मूवी रिलीज हुई थी 1979 में, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, शशि कपूर, प्रवीण बाबी लीड रोल्स में थे। डायरेक्टर है मूवी के मनमोहन देसाई और ये गाना सुने बिना तो बात नहीं बन पाए।
3: हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली,
0: मोहम्मद रफी की आवाज आशा भोसले के साथ। म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के। एंड दिस इज अ डिवोशनल कम्युनिटी सेंटर्ड साइड ऑफ नवरात्रि। ये गाना सिर्फ माता रानी को सेलिब्रेट नहीं करता बट इट आल्सो कैरीज द काइंड ऑफ कलेक्टिव फेस्टिव एनर्जी जिसने पुरानी हिंदी फिल्मों के म्यूजिक को रेगुलर प्रेजेंस दी गरबा गैदरिंग्स में फॉर डेकेड्स। वेल, मेरी इस लिस्ट में ऐसे ही चार और गानों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं।
1: इसका भाई अच्छा चेहरा होना भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है।
2: बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था, वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
5: यस बेबो,
4: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
5: यस yes.
4: कैच क्या है?
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ, डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
4: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
5: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो, दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
8: entertainment. Qatar का number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अगली बार मूवी देखने जाओ तो इस इंसान को थैंक यू बोलना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वी वेरी वेल नो कि मूवी देखने जाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस भी लेकर जाना होता है, क्योंकि पिक्चर शुरू होने से पहले उस पिक्चर के अलावा और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन का एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया है हैदराबाद से। सो 2025 में एक इंसान गया फिल्म कुबेरा देखने, जिसमें धनुष और नागार्जुन थे, लेकिन उस मूवी के शुरू होने से पहले उसको 22 मिनट तक लगभग एड्स देखने पड़े। मतलब पॉपकॉर्न खत्म होने का रिस्क फिल्म शुरू होने से पहले ही। एंड ऑब्वियसली यार, जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप फिल्म देखने के पैसे देते हैं ना, एक मिनी एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल तो अटेंड नहीं कर रहे होते। इसी बात को लेकर उस इंसान ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैदराबाद का दरवाजा खटखटाया। एंड फाइनली कमीशन ने पिछले महीने इस थिएटर चेन को डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए जिम्मेदार ठहराया और 20,000 रुपए कॉम्पनसेशन के साथ 5,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट देने का ऑर्डर किया टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इस थिएटर चेन ने अपने एड टाइम को 15 मिनट से 10 मिनट तक रिड्यूस करने की बात कही है। बट फिलहाल तो मेरे दिमाग में उन लोगों का चल रहा है जो यही 15-20 मिनट का बफर टाइम लेके मूवी देखने जाते हैं। अरे लेट हो रहे हैं तो हो रहे हैं भाई, 9 बजे थोड़ी शुरू होगी मूवी, वो तो 9:15 तक होगी, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वेल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम, वो मुझसे कनेक्ट करके जरूर बताइएगा। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लव लव लव लवेरिया हुआ।
1: बॉलीपीडिया।
0: देखो यार, बॉलीवुड में अब गाने बनते हैं, वायरल होते हैं, लेकिन 90s में कुछ गाने ऐसे बनते थे जो डेकेड्स बाद भी दिमाग से निकल नहीं पाते थे। और ऐसा ही एक गाना है शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का। लेकिन आपको पता है, इस गाने की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सो 1991 में रमेश तुरानी और कुमार तुरानी को अपनी फिल्म के लिए एक कैची तड़कता भड़कता गाना चाहिए था। फिर विवेक वासवानी के रिकमेंडेशन पे जतिन ललित से बात हुई तो उन्होंने एक गाना सुनाया जो शेखर कपूर के किसी फिल्म के लिए लॉक कर लिया गया था। अब इन लोगों को वो गाना पसंद आया और उसके बाद रमेश तुरानी ने बोला कि भाई शेखर कपूर अगले 20 सालों तक फिल्म नहीं बनाने वाले। जिस पे सवाल आया कि भाई आपको कैसे पता, देन ही रिवील्ड कि वो काफी टाइम से शेखर कपूर के साथ चैंपियन नाम की फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें बॉबी देओल को लीड मिलने वाला था। बट उन्हीं डिस्कशंस के बीच शेखर कपूर ने मेंशन किया कि भाई उनको फिल्मों से ब्रेक लेना है। एंड दैट्स हाउ वो गाना आ गया अजीज मिर्जा की राजू बन गया जेंटलमैन में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने गाना सुना और उनको लवेरिया शब्द समझ नहीं आया। फिर उनको बताया गया कि ये मलेरिया की तरह प्यार का बुखार है, तो उन्होंने बोला कि भाई लवेरिया के आगे लव लव लव लगाओ, तब लोगों को समझ आएगा। एंड दैट्स हाउ दिस सॉन्ग वॉज एग्जैक्टली मेड।

0: इमेजिन एक छोटा सा सजेशन बन गया इस गाने का सबसे आइकॉनिक हुक। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं और वो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल।
7: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
8: दिस इज विनोद राठौर एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार।
9: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई मजाक और पर्सनल अटैक में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है?
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड यस, जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना मजाक और पर्सनल अटैक में कुछ खास अंतर समझ नहीं आता, इसलिए आज मजाक करने वाले दो लोगों की डिस्कशन करना चाहती हूँ। फर्स्ट आर द पीपल जो समझदार हैं, ये वेल रेड हैं एंड ये ना अपने मजाक से किसी और को ऑफेंड नहीं करते हैं। ये अगर किसी से मजाक करते हैं तो भाई सामने वाले को ना बुरा नहीं लगता, बल्कि वो इंसान इस इंसान के साथ मिलके और ठहाके लगाता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ मजाक करने वाले लोग हैं, ये ना थोड़े दिमाग से पैदल से लगते हैं मुझे यार, क्योंकि ये मजाक के नाम पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो किसी के रंग ढंग को लेकर हो, बॉडी टाइप को लेकर हो, सेक्सुअलिटी को लेकर हो, और इन सारी गलीज हरकतों को वो डार्क ह्यूमर का चोंगा पहना देते हैं। वैसे आज के डेट में इंडिया में तो हर दूसरा कॉमेडियन यही काम कर रहा है, बट एक्चुअल में अगर आपको डार्क ह्यूमर समझना है तो भाई वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट दैट इज मासूम राजवानी के कंटेंट को एक बार जरूर चेकआउट करना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: यार एक बात बताओ, स्कूल में हम पढ़ने जाते थे या स्टेशनरी कलेक्ट करने?
1: 90 ml विद श्रुति।
0: क्योंकि पेंसिल बॉक्स में एक चीज ऐसी होती थी जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बिना हमारा बचपन जरूर अधूरा था, और वो थी फ्लेवर्ड सेंटेड एंड प्रिंटेड इरेजर्स। बाबू मोशाय, किसी के पास स्ट्रॉबेरी वाला इरेजर, किसी के पास पाइनएप्पल, किसी के पास आइसक्रीम जैसा, तो किसी के पास बर्गर और फ्रूट्स के शेप वाले। और भाई जिस बच्चे के पास वो छोटे छोटे मल्टीपल पीसेस में खुलने वाले इरेजर होते थे ना, ओहो, उसका तो अलग ही टौरा होता था। और सबसे मजेदार बात, उनमें से आधे इरेजर्स पेंसिल की गलती मिटाने के लिए नहीं बल्कि उसकी खुशबू लेने के लिए खरीदे जाते थे। नोटबुक खोली नहीं कि पहले इरेजर नाक के पास और फिर पढ़ाई शुरू। मतलब हमारे अलग सस्ते नशे चलते थे। और बताओ, आज हम बड़े हो गए, हमारी गलतियां भी बड़ी हो गई, बस फर्क इतना है कि अब उन्हें मिटाने के लिए सेंटेड इरेजर्स नहीं मिलते। काश जिंदगी में भी एक ऐसा इरेजर होता ना जो गलती मिटाने के साथ साथ उस वक्त की खुशबू भी वापस ले आता, जब सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि कल स्कूल में कहीं अपना फेवरेट रेजर किसी से शेयर ना करना पड़े। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna. Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: How's the Josh?
9: Hi sir!
8: How's the Josh?
9: Hi sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: याद है वो टाइम जब बॉलीवुड की गॉसिप्स के लिए ना इंस्टाग्राम पेजेस थे, ना हर सेलिब्रिटी की लाइफ का 24/7 अपडेट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हमें इंतजार होता था तो कॉफी विद करण का, उस आइकॉनिक काउच का जहां कॉफी के साथ सीक्रेट स्पिल होते थे, रैपिड फायर में सेलेब्स की बोलती बंद होती थी और एक स्टेटमेंट पूरे बॉलीवुड में डिस्कशन का टॉपिक बन जाता था। इनफैक्ट कॉफी विद करण सिर्फ एक चैट शो नहीं था, इट वॉज अ होल पॉप कल्चर मोमेंट। और अब करण जौहर अपने इस आइकॉनिक शो के 9th एंड रिपोर्टेडली फाइनल एपिसोड के साथ लौट रहे हैं ऑन द 14th of October, और इस बार गेस्ट पेयरिंग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अनन्या प्लस अनन्या होंगी, नहीं दो अनन्या एक साथ, एज इन की अनन्या पांडे एंड अनन्या बिरला। पता ना हो तो बता दूं, ये बिजनेस वुमन है एंड बिलियनेयर इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला की बेटी हैं। इनके अलावा आलिया भट्ट के साथ उनकी सिस्टर शाहीन होंगी, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना होगी। ओहो, अभी रिसेंट इंटरव्यूज जो ऑलरेडी इनके वायरल हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया इज चुम्मा। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम इन दिस शो। फिर इब्राहिम अली खान और सारे अली खान होंगे, और एक्सपेक्टेड पेयरिंग्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, करीना और सैफ, वरुण धवन और जानवी कपूर जैसे नाम भी डिस्कस हो रहे हैं। बट ऑनेस्टली यार, इस शो का नॉस्टैल्जिया सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये वो एरा था जब हम अपने फेवरेट स्टार्स को एक डिफरेंट अवतार में देखते थे, उनकी फ्रेंडशिप्स, उनकी नोकझोंक, उनकी कन्फेशंस और वो ऑकवर्ड मोमेंट्स जो मीम्स बनने से पहले ही आइकॉनिक हो जाते थे। तो इस लास्ट ब्रू के साथ क्या सर्व होगा नॉस्टैल्जिया, अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस या फिर एक आइकॉनिक रैपिड फायर मोमेंट, जो भी होगा वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldar. Only on Mirchi. It's hot.
3: 89.6. 89.6.
4: It's hot.

एग्जाम आने वाला होता है उसका पता तब लगता है जब क्लास में रिवीजन कराया जाता है, मैच होने वाला है उसका पता तब लगता है जब टॉस होने वाला है, और कतर में विंटर्स आने वाले इसका पता तब लगता है जब इवेंट शुरू होते हैं। आई नो वैसे तो 365 दिन कतर के किसी न किसी कोने में कोई इवेंट चल रहा होता है, लेकिन जब बात बीच पे इवेंट्स की आए तो समझ जाइए कि मौसम बदल रहा है मेरे दोस्त, और उसका ही फलस्वरूप अब हमें इवेंट्स के लाइनअप के बारे में पता लग रहा है। 974 फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन लॉन्च करने जा रहा है 16th of October, जब बच्चों का मिड टर्म ब्रेक होगा उस दौरान हम लोग ढेर सारी मस्ती फन करने वाले हैं। एंड इसके अलावा सी लाइन पर अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हो उसके लाइसेंस की शुरुआत होने वाली है। ये सब कुछ ये बता रहा है कि मौसम बदलने जा रहा है दोस्त, इंतजार कीजिए, बस बात अब चंद रोज की रह गई है जब ठंडक अपने धीरे धीरे घर करना शुरू करेगी और अगले 6 महीने तक हमारे कतर की रौनक को यूं ही बरकरार रखेगी। फिलहाल अगले 4 घंटे आप हमें सौंप दीजिए क्योंकि अभी भी हम आ गए हैं करक का एकदम परफेक्ट टाइम है। एक करक हाथ में, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा ही लीजिए क्योंकि मस्त मौला गौरव के साथ हमने शुरुआत कर दी है शाम शानदार की सर। और आते ही क्योंकि सीधे साधे आदमी इसलिए शरारत सिखाते हैं मिर्ची पर इट्स हॉट। शाश्वत सदैव मधुबंशी बख्शी मिलके गाएंगे गाना और हम लोग करेंगे शरारत।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. Na vjetvala murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो.
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
1: लेकिन
2: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
8: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes, and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
7: This initiative is driven by GWM.
9: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
10: खट खट.
11: Who there?
10: बनता.
11: बनता who?
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
11: खट खट. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस बार पठान 974 बीच पर झूमेगा क्योंकि बच्चों का ब्रेक आने वाला है और 974 बीच पर फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन होने वाला है।
1: #974 मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: बता दें, मौसम बदलते ही चीजें अब बेहतरीन की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने फैमिलीज को इनवाइट किया, रेसिडेंट्स को इनवाइट किया है फेस्टिवल ऑफ वेकेशन फन के लिए, जो इस 16 अक्टूबर 974 बीच पर होने जा रहा है। शाम 3 बजे से देर रात 7 बजे तक ये चलेगा एंड प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज है, जिसमें बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट है, इनफ्लेटेबल्स है, बबल शो है, फेस पेंटिंग है एंड 6 साल से अगर बच्चे छोटे हैं तो एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर उससे ऊपर हैं तो अंडर 14 15 कतरियाल या एडल्ट कैटेगरी तो 35 कतरियाल एंड व्हीकल की एंट्री अगर आप चाहते हैं स्टार की तरह आप अंदर जाएं अपनी कार से तो उसके लिए 150 कतरियाल जेब से ढीले करने पड़ेंगे। एक्टिविटी इज फॉर एवरीवन, जाइए एंट्री टिकट लीजिए और मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के इस फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन का हिस्सा बन जाइए। इंटरेस्ट मी, कतर में जब ऐसी बीच पार्टीज होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है यार एक ऐसी जगह तो है जहां पर हम जाकर खुलकर अपने दोस्तों के साथ या फिर नए दोस्तों को बनाने का एक मौका मिल जाता है। 89.6 मिर्ची वन इस फ्राइडे, ठिकाना होना चाहिए 974 बीच। चलो चलो टिकट कराओ मिर्ची। इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आसमानी आसमानी ही आसमानी, मेरी बात आपको नहीं समझ आनी तो फिर नुकसान हो जानी मेरे भाई।
1: मस्त मौला गौरव।
0: कभी कभी इंसान पैसों के साथ भरा होता है लेकिन उसे लग रहा होता है इसे खर्चा कहाँ करें, तो मैं कहता हूँ खर्चा उस जगह करो जहाँ से रिटर्न की उम्मीद हो, एंड गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकर आ गया वह
2: गोल्ड अपडेट।
0: अल फतान एक्सचेंज जो कि हमारे कतर में है, पैम्प के रियल एजेंट जो लेकर आते हैं 24 कैरेट स्विट्जरलैंड वाली गोल्ड डील, वो आज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा एट अल फरदान एक्सचेंज 567 कतरी रियाल में। पैम्प का 5 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार 2652 कतरी रियाल, पैम्प का 10 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार एट 5235 कतरी रियाल, पैम्प 1 औंस गोल्ड एडी बार 16179 कतरी रियाल, एंड पैम्प का 10 तोला गोल्ड बार एट 60059 कतरी रियाल। आ रहे हैं फेस्टिव सीजन, सेल होगी बढ़ के, तो आई एम श्योर ये प्राइसेस इससे पहले अप हो जाएं, आप जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर लो। एंड गौरव को थैंक यू कह दो जो बता रहा है कि पैम्प जो कि स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी के साथ आता है, उसके रियल एजेंट हमारे कतर में है अल फरदान एक्सचेंज। जाइए खरीद लीजिए, मस्त मौला गौरव को थैंक यू कीजिए जब रिटर्न मिलेगा। हाँ जी मिर्ची थॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज

0: अमित त्रिवेदी मोहन करण के आवाज में रिश्तों का मांझा इतने आसानी से नहीं सुलझता साहब। बल्कि कई बार तो अगर सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो और उलझ जाता है, इसलिए ज्यादा दिमाग न लगाइए, समय पर सब छोड़िए, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। इन सब के बीच मौसम कब मरहम लगाओगे हम पे, गर्मी से ठंडी का?
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: त्रुटि तो हो रही है सूरज चाचू आपसे, आपको किसी ने बताया नहीं अक्टूबर 15 आने वाली है, आप अभी भी चमकाना अगस्त सितंबर वाली दिखा रहे हो। दिन का मैक्सिमम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, जिसका सरफेस इंपैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा। बड़ी बात यह है कि कल शायद ही नीचे चला जाए। 11 किलोमीटर उससे कम की रफ्तार से चलती हवाएं ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रही है। ह्यूमिडिटी 43% के आसपास, हमें अभी भी गर्मी वाली फीलिंग तो दे रही है, पर ज्यादा दिन रह नहीं गए। इन दोनों की छुट्टी होगी थोड़े दिनों के लिए, यानी कि गर्मी और ह्यूमिडिटी, एंड जल्द ही हम इंजॉय करेंगे उस खूबसूरत वेदर को जिसमें कतर में असली रौनक लगती है। चाहे बीच हो, आउटिंग हो, किसी भी जगह घूमना हो, हर टाइम हम जा सकते हैं, ऐसा फीलिंग आ जाता है। 89.6 मिर्ची वन पर, तब तक के लिए अभी भी एंटरटेनमेंट का मौसम यहाँ 24 घंटे सातों दिन 365 पूरे साल बना रहता है, बस ट्यून कर लो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
4: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
5: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
6: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोर्डल। बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोर्डल।
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वैसे जितना पुराना मेरा इस गाने से रिश्ता है उतना ही पुराना रेडियो से रिश्ता है। फिलहाल के लिए आपके साथ मस्पोला गौरव है और इस घंटे आपके उन गानों से अगर रिश्ते हैं जो 90s के दौर में अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड कुमार सानू ने गाए, तो ये अब अपने कतर में होने जा रहा है बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट। एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल, जहां पर हम आपको दे रहे हैं पासेस, यानी कि जीतने का मौका है जहां पर आपको मिल सकता है पास, लेकिन उसके लिए आपको देना होगा हमारे सवाल का जवाब। और आज का सवाल है कि एक और बिग बॉस कंटेस्टेंट से हमारा पुराना रिश्ता है, नाम है काजी तौकीर, जो भैया सबके लिए रॉकस्टार हैं, लेकिन कल बेचारे फूट फूट कर रोए, ऐसे में बहुत लोग इमोशनल भी हो गए उनको ऐसा फूटता हुआ रोते देखकर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, काजी तौकीर जब बॉलीवुड में गाने में नजर आए तो उस फिल्म में उनके साथ गाने में एक हीरोइन नजर आई थी, किसी को याद है वो कौन सा गाना था और हीरोइन कौन सी थी? 5000196 पर जो सबसे पहले बता रहा है वो तो जीत ही रहा है, उसके अलावा बाकी लोग भी बताइए, हम दो लकी विनर इस घंटे चुनेंगे। 5000196 आपको बताना है, काजी तौकीर जिस बॉलीवुड गाने में पहली बार नजर आए थे उस बॉलीवुड गाने में वो कौन सा गाना था और उनके साथ कौन सी हीरोइन थी? 5000196 पर मस्मौला गौरव इंतजार कर रहा है, थोड़ा आपके दिमाग के घोड़ों को आपको दौड़ाना ही पड़ेगा। 89.6 मिर्ची 1, जल्दी जल्दी अपने जवाब भेज दो, काजी तौकीर जिस बॉलीवुड सॉन्ग में नजर आया उनके साथ उसमें कौन सी अभिनेत्री थी? गूगल करके नहीं बताना है यूसुफ भाई, दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है एंड अपने आप को याद करके बताना है। 89.6 मिर्ची 1 पर गाना एंड हीरोइन का नाम याद रखिए, कौन सा गाना था ये भी बताना पड़ेगा। एक जवाब नहीं दो जवाब लूंगा मैं, मिर्ची इट्स हॉट।

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabhid wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish, please? मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट. एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
4: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पर यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
6: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल.
7: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
10: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
11: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
12: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
14: 89.6
15: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल हमारे कतर में लेकर आ रहे हैं। एंड सवाल आज मैंने सिंपल किया, अगर आप अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड जूनियर कुमार सानू को सुनने जाना चाहते हैं तो हमारे सवाल का जवाब देना है कि काजी तौकीर बॉलीवुड के किस गाने में नजर आए थे और उनके साथ कौन सी अदाकारा थी।
1: हाय, माय नेम इज अहमद फरस, द आंसर इज अफगान जलेबी, कैटरीना कैफ।
2: हाय गौरव, दिस इज तृप्ति, द सॉन्ग नेम इज अफगान जलेबी एंड द एक्ट्रेस इज कैटरीना कैफ।
3: यस, माय आंसर इज कैटरीना।
4: गौरव, अफगान जलेबी कैटरीना कैफ के साथ।
1: ओके, टॉपिक
5: गुड इवनिंग गौरव जी, आपके सवाल का जवाब है कैटरीना कैफ जी, और वो गाना था जिस अफगान जलेबी। ओके सर, थैंक यू।
6: गुड इवनिंग, द आंसर इज अफगान जलेबी और कैटरीना कैफ। माय नेम इज इकबाल।
7: हेलो आजू भाई, गौरव भाई कैसे हुआ? आई थिंक इज अफगान जलेबी एंड ही वाज विद कैटरीना कैफ। अफगान जलेबी माशूख फलेबी, घायल है तेरा दीवाना, अरे वाह भाई वाह। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट, थैंक यू।
0: बिल्कुल सही जवाब है, अफगान जलेबी गाने में काजी तौकीर अचानक नजर आए और पूरी दुनिया ने कहा अरे ये तो वही काजी तौकीर है जो फेम गुरुकुल से निकलकर फेम पाकर अब फाइनली हमें गानों में सुनाई दे रहा है। एंड लकी विनर कौन बना है इसको जानने के लिए पहले तो हमको ये गाना ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मस्त मलक और इतने कहेगा ये गाना ऐसा गाना है ना जो हिला देता है, आपको मजबूर कर देता है। एंड ऐसे में मस्त बोलो गौरव बस यही कहना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे ही नगमे जो हमें 90s की याद दिलाएंगे वो लेकर अनुराधा पौडवाल आ रही हैं। एंड कुछ ऐसे खूबसूरत गाने जिनको हमने बहुत दिनों तक गुनगुनाया एंड अब फाइनली हम यहाँ पर अपने कतर में सुनने जा रहे हैं वो, जैसे कि अगला गाना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये ऐसा ही गाना है जिसको हम सुनने के बाद कहेंगे अरे यार ये गाना तो हम भूल ही गए थे। आइए उस इवेंट से रिलेटेड एक गाना यहाँ मिर्ची पर।

0: दर्शन रावल, आशीष कौर, इंडिया पहुंचा दिया आपको इस गाने के साथ फेस्टिव सीजन में हमने। गरबा की धूम, डांडिया की धूम चलती है इंडिया में इस टाइम। तो फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और हमारे यहाँ भी धूम मचेगी जब विंटर सीजन ऑफिशियली ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बुला रहे हैं। बिजनेस बाबू भैया, बिजनेस आइडिया #974974। हम आपको बता दें, बुलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन कोऑपरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की एप्लीकेशन लेकर आ जाओ। अगर आपको टेम्परेरी कमर्शियल लाइसेंसेस चाहिए तो उसके लिए प्राइस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सी लाइन एरिया में जो लोग आने वाले टाइम में अपनी क्वाड बाइक्स लेकर चाहते हैं कि उसका रेंट अच्छा मिल जाए या फिर कोई और बिजनेस एक्टिविटीज वहां चलाना चाहते हैं, तो बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर से कहा गया है टेम्परेरी कमर्शियल लाइसेंस ले लो, प्राइस को रजिस्टर करा लो, ताकि सी लाइन एरिया में आने वाले सीजन का आप फुल टू फायदा उठाओ और पैसे कमाओ यार। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, टेरेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म स्टैम्प बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा एक अंडरटेकिंग जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट मीट करने चाहिए आप, एंड सिविल डिफेंस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो लोग बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे थे, मैंने उनको एक दे दिया है। अगर इस आने वाले सीजन में कुछ करना चाहते हो तो यहां एक ऑप्शन है सी लाइन पर। अगर आप टेम्परेरी कमर्शियल लाइसेंस ले लोगे तो पैसे पैसे होंगे बाबू भैया। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव बताया। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह के टेम्परेरी लाइसेंस जब मिलते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते। इसलिए ऐसे लाइसेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपने किसी दोस्त यार के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, पहले ये करा लीजिए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था।
3: जी, दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

नॉट रमैया व्हाट्सअप भैया अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में सुपर म्यूजिक के साथ गाना सुनाया किसने? जब हम आपके साथ देवेश सजनों पैसे की बात करेंगे क्योंकि बाबू भैया मनी इज बिगे. इस वक्त एक कचरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.23 INR है, 26 रुपए 23 पैसे भारतीय मुद्रा में. वहीं एक कचरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.82. अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब 76.11 पाकिस्तान रुपीज अगेंस्ट 1 कचरे रियाल. और इसके बाद तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छो दाजो 1 कचरे रियाल के बदले 41.95 का रेट छो भाई नहीं हाँ जी 41.95 का रेट छो हाजूर घर भेजन लाई सही टाइम छो. एंड इसके बाद बांधु बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा एकटा कतरे रियाल के बदले 33.78 तो 33.78 ऐटा रेट छिलम तो बाड़ी तो पटी दो मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन पर ये था आई पे करेंसी रेट मिर्ची इट्स हॉट.

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी, संजू राठौड़ के आवाज में गाना सुनाया कि इसने,
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन जो मैं सुना रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई हमारे कतर में अब इवेंट्स की झड़ियाँ शुरू होने वाली है, और इन सब के बीच सबसे पहला इवेंट जो अनाउंस हो गया 974 बीच पर, फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन अक्टूबर 16th, यानी कि अपकमिंग वाला जो फ्राइडे है वहां पर रौनक लगेगी 974 बीच पर। एंड बड़ी बात यह है, फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन एक दिन के लिए अक्टूबर 16th के लिए शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। एंड अच्छी बात यह है, फैमिली फ्रेंडली एटमोसफियर रहेगा, बच्चों के लिए बहुत सारे जोन बनाए गए हैं, एंड एक तरह से बीच पर एक्टिविटी का सबसे जबरदस्त तरीका होगा क्योंकि यहां पर क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, एंड बच्चों के लिए स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इन्फ्लेटेबल बबल शो है, एंड फेस पेंटिंग है। और तो और बीच पर जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं आप रिलैक्स रहते हैं, एंड उससे भी अच्छी बात मौसम अच्छा हो गया तो सोने पर सुहागा सर। एंड बड़ी बात यह है कि टिकट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स बिल्कुल फ्री, एंड अगर 14 से कम है, 6 से ज्यादा है तो 15 कतरी रियाल, और अगर एडल्ट्स हैं 35 कतरी रियाल। और बड़ी बात यह है बिल्कुल चल के नहीं जाना है, अगर आप बीच पे कार लेकर जा रहे हैं तो व्हीकल एंट्री इज अलाउड बट फॉर उस दैट 150 कतरी रियाल जेब से ढीले करने होंगे। मैं कहता हूं थोड़ा चल लोगे तो और फिट एंड फाइन ही रहोगे, और वो पैसे खर्च करना फैमिली के साथ फूड वूड के लिए, बेवरेजेस के लिए। लेकिन इस फ्राइडे आपके लिए एक फन इंतजार कर रहा है 974 बीच पर, इस मौके को मत जाने दो। इससे पहले एक तरह से ये प्री सीजन पार्टी समझ लो, विंटर आ रहे हैं एंड आई एम श्योर ऐसी पार्टीज हम बहुत करेंगे, लेकिन पहले की बात ही अलग होती है। सो गेट रेडी 89.6 मिर्ची 1 पर, मैं स्मॉल गौर बता दिया है, और इस तरह के गाने ना इस माहौल में पार्टी में और अच्छा कर देते। बंधु सखा तुम्हें सारे बंधु सखों के साथ पहुंचिए, कविता सेठ नीरज श्रीधर, तुम लोग गाना गाना, हम लोग इस पे डांस करेंगे।

0: Milci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ आप, चाहिए हमारे पास तो?
3: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
10: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
11: Yes.
10: कैच क्या है?
11: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
10: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
11: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
12: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
5: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
13: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
14: Cut, cut.
15: Who that?
14: Jassi.
15: Jassi? Kaun si wali Jassi?
14: Jassi who has come, auntie ji?
15: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: जो भेजी थी दुआ, अगर वो आसमान से जाके टकरा गई तो आएगी वापस, ऊपर वाला आपकी सुनेगा। वेल, अगर मेरी भी थोड़ी सी सुन ले तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल कतर रेलवेज की मेहनत की सुन ली गई है और कतर रेलवेज हैज बीन अवार्डेड, हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर ऑफ द ईयर।
1: #974
0: the most trending local news of the day. वो कतर रेलवे कंपनी जिसको हम कतर रेल के नाम से जानते हैं, उसे वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एट ग्लोबल लाइट रेल अवार्ड्स। यस, ग्लोबल लाइट रेल अवार्ड्स, ये पूरी दुनिया के बेस्ट रेलवे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है। एंड इस अवार्ड से ये है कि कंपनी किस बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर रही है, उनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी के साथ बेस्ट सर्विस परफॉर्मेंस को ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोहा मेट्रो लुसेल ट्रैम नेटवर्क को ये मिलना बता रहा है कि कतर इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड दैट टू हमारी कतर रेल शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। और मैं तो कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब इसी कतर रेल का हिस्सा बन जाएं हम, और यहां से एक ट्रेन सऊदी को निकल जाए, वहां से यूएई, और हम पूरे जीसीसी में घूमें एंड ट्रेन का मजा लें और उसमें करक करक गर्मा गर्म करक, इसके अलावा शॉर्मा फलाफिल ले लो। 89.6 मिर्ची वन पर इंतजार है, लेकिन फिलहाल इस अवार्ड को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपका भी कोई दोस्त दोहा मेट्रो लुसेल ट्रैम या फिर कतर रेल का हिस्सा है तो पार्टी ले लो, बता दिया हमने मिर्ची थॉट। Thank you.

0: कमाल खान की आवाज में ओ जानी जाना गाना किसने सुनाया?
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन फिलहाल के लिए ओ जानी जाना भूल से ना तुम ये खाना वरना होगी ये मुश्किल, ये हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हमसे कहा है। #974974 ये एक फाइटो फाइबर ड्रिंक है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है। यस, हम आपको बता दें हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक वार्निंग इशू की है मंडे अक्टूबर 12th यानी आज ही की है, जहां पर यू डोंट हैव टू यूज प्रोडक्ट कॉल गैस्ट्रो जीरो। ये एक फोटो फाइबर ड्रिंक है जो कि अनडिक्लेयर्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ यहां उतरा हुआ है। एंड मिनिस्ट्री कहना है कि ड्रग क्वालिटी लेबोरेटरी में कंफर्म होने के बाद ही हमें यह पता लग सकता है कि ये प्रोडक्ट जो कि स्लिमिंग प्रोडक्ट है ये कितना सही है। हालांकि उनका ये कहना है कि जब टेस्ट के दौरान हमें अनडिक्लेयर्ड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मिले तब हमने लोगों को वार्निंग दी है, एंड कहा गया है कि इस प्रोडक्ट को लाइसेंस नहीं मिला है कतर में। अगर इसे कोई सोशल मीडिया के प्रमोशन के बाद भी कहीं से खरीद रहा है तो याद रखिए मिनिस्ट्री बहुत नेसेसरी कंट्रोल लेगा और उन पर लीगल मेजर्स अप्लाई किए जाएंगे, वायलेट होने का मामला रहेगा, पब्लिक हेल्थ एंड उनकी सेफ्टी से खिलवाड़ वाला मामला। अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है याद रखिए यू कैन कॉल एट नंबर 16000 या फिर ghcc@moph.gov.qa पे, याद रखिएगा। आप ईमेल कर सकते हो ghcc@moph.gov.qa अगर एनीबडी इज सेलिंग दिस गैस्ट्रो जीरो फोटो फाइबर ड्रिंक, फाइटो फाइबर ड्रिंक। मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा, पतला होने का शौक है दोस्तों, मेहनत करो, कम खाओ, चीजें सही देंगी रिजल्ट, बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry. Offer valid till 19th October.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे गौरव और राइट नाउ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आप तक लेकर आया हूँ. यस, सीइंग द सिचुएशन, द टेंस सिचुएशन इन सऊदी अरेबिया, कतर एयरवेज ने टेम्परेरी सस्पेंशन कर दिया है अपनी फ्लाइट्स का जो रियाद एंड दम्माम के लिए जाती है. यस, टेम्परेरी सस्पेंड हुई है एंड एयरलाइन ने कहा है जो भी अफेक्टेड पैसेंजर्स हैं उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उन्हें एडवाइस किया जाएगा और आने वाले दिनों में उनके लिए जो सुविधा होगी वो की जाएगी. लेकिन एयरलाइन ने टेम्परेरी फ्लाइट सस्पेंशन के लिए ड्यूरेशन कितना रखा है, मतलब कितने दिनों के लिए है, ये नहीं बताया. यस, अभी फिलहाल के लिए जो भी वहां डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर नजर रखी जा रही है और रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर डिसीजन लिए जाएंगे. फिलहाल के लिए ट्रेवल अलर्ट ऑन मंडे अक्टूबर 12th, जिसमें अभी तक कतर एयरवेज ने यह कहा है कि 4:54 PM शाम को जब कतर एयरवेज पर यह अपडेट आया कि फिलहाल के लिए टेम्प्रेरी सस्पेंडेड है फ्लाइट जो कि रियाद से टू एंड फ्रो हो रही है. यस, फ्रॉम रियाद एंड दमाम इन सऊदी अरेबिया टू कतर, वो फ्लाइट्स फिलहाल के लिए सस्पेंडेड है. हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में हो, सब कुछ ठीक हो जाए और सुख शांति जो हम दुनिया में चाहते हैं यार वो हमेशा रहे. अमन, यही तो हम चाहते हैं और एक दिन ये ज़रूर होगा, हमें ऐसी उम्मीद है. और ऊपर वाले से इसके लिए दुआ कीजिए एंड फिलहाल के लिए उन पैसेंजर्स को जिनके फ्लाइट्स थी उनको कतर एयरवेज खुद कॉन्टैक्ट करेगा. 89.6 मिर्ची 1 पर ये इंपॉर्टेंट अपडेट गौरव के साथ. मिर्ची पर इट्स हॉट.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

अब MOCI में भी जी पे एंड एप्पल पे होगा। यही बताना चाहता हूँ कि अब कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने आपके लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन पर फीस पे करने का तरीका आसान कर दिया है। अब आप एप्पल पे और गूगल पे से भी पे कर सकते हो। यस, हम आपको बता दें इसका मेन मकसद यही है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा फास्ट हो जाए, लोगों को ईजी हो एंड कन्वीनियंट इतना रहे कि लोगों को सोचना नहीं पड़े, बस मोबाइल के एक क्लिक से काम हो रहा है। हाँ जी, अब सोचिए बिना किसी झंझट के आप आसानी से MOCI के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आराम से अपने स्मार्टफोन एप्लीकेशन पर जाकर पे कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि सेकेंड्स के अंदर आपका ये काम हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई कार्ड शार्ड भी नहीं रखना है। जी पे कर दो या फिर एप्पल पे कर दो और आपका पेमेंट डन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ये एक नया पेमेंट ऑप्शन ऐड कर दिया है जो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए है। तो अगली बार कार्ड शार्ट का झंझट खत्म, एप्पल पे गूगल पे ही वो काम कर देगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक दिन आ जाएगा जब करेंसी हम कहा करेंगे नोट वोट ना, कि ये एक जमाने में हमारी जेबों में होता था, आज सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ने को मिलता है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milci, burga.
1: Hallo.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर आया है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी, किसी को हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
7: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
8: Yes.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
9: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
10: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
9: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
11: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
9: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
12: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
13: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: बिजनेस आइडिया बाबू भैया, बिजनेस आइडिया आ गया। ये मौका आपको दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इस पूरे आने वाले विंटर सीजन के दौरान अगर आप सी लाइन एरिया में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके लिए थोड़े पैसे लेना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको एक टेम्पररी कमर्शियल लाइसेंस का मौका है। यस, हम आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये रास्ता खोल दिया आपके लिए। अगर आप टेम्पररी कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहते हैं, प्राइस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे सी लाइन एरिया में, उसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है गवर्नमेंट सर्विसेज सेंटर में, जो कि अल बकरा ब्रांच वाला है, वहां जाकर ये सबमिट कर देना है। एंड फिर इंतजार करना है, जैसे ही आपको ये लाइसेंस मिला आप ये कमर्शियल एक्टिविटी कर पाएंगे एंड चार पैसे विंटर सीजन में कमा पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। टेनेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म स्टैम्प्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, एक अंडरटेकिंग जिसमें आप सिक्योरिटी सेफ्टी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, एंड सिविल डिफेंस का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कुल मिलाकर आने वाले टाइम में अगर आप सी लाइन एरिया में छोटा मोटा बिजनेस कर थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एंड वहां के लिए जाना कहां है, गवर्नमेंट सर्विसेज सेंटर अलवकरा ब्रांच में। एंड उसके बाद बाबू भैया पैसे ही पैसे होंगे, रियल ही रियल होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल जो इस बार कुछ कमाने धमाने की सोच रहे हो, मेहनत कीजिए एंड चार पैसे कमाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही। और कतर के किसी भी इवेंट के दौरान कभी भी जब पब्लिक की बहुत भीड़ पब्लिक प्लेसेस पर होती है, उस दौरान एक चीज जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है वो है हमारे कतर रेलवे कंपनी, कतर रेल के सारे एम्प्लॉयज। अब चाहे वो दोहा मेट्रो हो, लुसेल ट्रैम हो, सब मेहनत करते हैं और उसी की वजह से आज वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है एट द लाइट रेल अवार्ड्स। यस, ग्लोबल लाइट रेल अवार्ड्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ, वहां पर कतर के इसी कतर रेल को हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर ऑफ द ईयर। एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये अवार्ड एक तरह से इस बात को फाइनल करता है कि आपके ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बेहतरीन है, आपने इनोवेशन जो किया है उसमें वो सारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रखा है, पैसेंजर्स की सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, उनको वर्ल्ड क्लास सेफ्टी के साथ बेस्ट सर्विस परफॉर्मेंस देनी है और कस्टमर का एक्सपीरियंस वाला एकदम सुपर डुपर होता है, एकदम हेलो। और शायद उसी का रिजल्ट है आज कतर रेल को इतना बड़ा अवार्ड मिला। एंड वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, कतर में जब दुनिया का कोई भी आएगा तो वो कुछ पहचाने ना पहचाने कतर रेल के मुस्कुराते हुए एम्प्लॉइज को जरूर पहचानेगा। एंड दोस्तों ये बताता है कि कतर जब कहता है ना हबीबी कम टू कतर, तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए ही लोगों को बुलाता है। सो कतर रेल वालों, पार्टी तो बनती है, अगर आपका भी कोई दोस्त यार जो कतर रेल में काम करता है उसे पार्टी लो, लुसेल ट्रैम वाला है, दोहा मेट्रो वाला, उसे कह दो पार्टी चाहिए भाई, तुम लोगों को इतना बड़ा अवार्ड मिला। 89.6 मिर्ची 1, कांग्रेचुलेशंस टू होल कतर रेल टीम। मिर्ची इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

यार कभी कभी ना मुझे खुद पर तरस आता है कि हमारे स्कूल डेज में ऐसा क्यों नहीं होता था। मस्त मौला गौरव। अरे जैसा आज लॉयला इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, मिर्ची की पूरी टीम गई GWM मिर्ची रिचार्ज, बच्चों के साथ फन मस्ती धमाल। एक हमारे स्कूल में था, पढ़ाई कर लो बहुत होता था, पीटी करा देते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों को रिचार्ज कराया जा रहा है GWM का मिर्ची रिचार्ज। आज लेकर हम पहुंचे थे वो कैर में, यस लॉयला इंटरनेशनल स्कूल में, एंड ट्रस्ट मी यार बच्चों क्या एनर्जी है तुम्हारे अंदर। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दी टीचर्स, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ लॉयला इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम सबको एकदम होश किया, एंड बच्चों ने जो कमाल की एनर्जी दिखाई है, बॉस कहाँ से लाते हो, हमें तो लगा था हम ही हैं आलू के पराठे खा के एनर्जी, लेकिन बच्चों ने आज कमाल किया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आज GWM मिर्ची रिचार्ज लॉयला इंटरनेशनल स्कूल गया, और अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे उसके लिए बस कान लगाकर सुनते रहेगा मिर्ची, लेकिन फिलहाल के लिए आज जो मस्ती धमाल हुआ वो जल्दी आप यहां मिर्ची पर भी सुनोगे। अब मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। वैसे एक बात कहूंगा यार, स्कूल का जब किसी भी फंक्शन में जाओ, अटेंड करो या वहां पर जाकर कुछ मस्ती करो ना, तो ऐसा लगता है लाइफ में सिर्फ क्लास 1 से क्लास 12 है, क्यों नहीं क्लास 1 से क्लास 24 है जी। 89.6 मिर्ची 1 से मी सिंह टाटा बाबा, लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। तब तक हबीबी गुल्लक मिर्ची हरारा खतीर, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित्स विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनरा, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's back! LG and Jumbo की मेगा प्रमोशन। LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs और audio products पर assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles और Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores या JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंदू 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1, दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।
2: नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माय गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानू बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि audience को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी film देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये perception किसके लिए create कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में, मैं आपको बोलूँ नहीं आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीस थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: चल, इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग। बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
1: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
1: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
1: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने ATM यूज किया है।
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
1: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
1: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताए। आप बतमीजी से बात मत करिए।
2: सबको लगा दूंगा लाइन में।
1: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
6: यस बेबो।
5: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
6: यस yes.
5: कैच क्या है?
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
7: खट खट।
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
8: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
9: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे, और यही प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब सूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार ये मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का उक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक of course।

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागल बन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैं अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय,
0: आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा, शायद

वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया। एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉप 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
3: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

89.6 Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्में उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट? कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट?
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट? एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
4: हूं। वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। That is why 7 Filmfare Awards जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, so don't you go anywhere.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: कौन है?
3: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
3: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
4: खट खट,
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देवानंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: भट पूछ
1: भट
0: भट अरे भट हूँ
1: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
0: खट खट हू दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।

0: याद सता।
1: सो दिस लाइन, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी, लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस।

89.6 Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं
1: बोल रहे
2: राज जी नमस्कार कैसे हैं आप
1: बढ़िया है कौन सा बोल रहे हैं
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी अच्छा इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है यू नो जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं वही मैं आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा
1: तो
2: हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ पूरी नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है एक पेपर है बड़ा सा आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ है ना ये
1: मुझे भी भेजना
2: राजी एक कॉपी नहीं आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स से उनको भी भेजूंगा
2: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो
1: हाँ बिल्कुल बताइए
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें राज में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आप रेडियो मिर्ची में हैं मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए
1: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस
5: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडी से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो SD बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे RD बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो SD बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑल राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। SD बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM Mirchi 1.
0: It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का, जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा, एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरानी।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे। आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है। अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान। और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी। ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे। हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA with Love।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आसमान। इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हु सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टरपीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो?
3: क्या यार?
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था. फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है. बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग. पुरानी जीन्स पे आपो श्रेया के साथ गाइड फिल्म की बात हो रही है. देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी. द सॉन्ग वॉज. अब ये गाना जब बनने लगा ना, तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया. उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना. लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग. एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग. ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, तो फिर से नहीं सुनाऊंगी. लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: खट खट अगर कर
3: हूँ।
2: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
3: खट खट हूँ दैट।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस, और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे, जिसकी इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस, और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
4: I don't have to mouth those
5: lines. Sorry bro, sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।